लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

सुबिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो सुबिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सब प्रभु जी पास सब किचों किता तेरा वर्ते सदा सदा तेरी आस जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई जे

जन को प्रभु अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मतलब परमा चरण शरण हम अनाथ ना फर्तन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण

मध्यन होत साधु तुरे आवण जानू रे थित पाई जन्म मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दगुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन्मानक सब बनिहार हर गुण गाओ।

भगत नु गुरु प्यार वाले नु बिना गुरु के दर्शन ते गुरु के दर्शन दे भी दो अर्थ ने, एक ता दीदार जिहड़ी अखां नाल करने आपां, एक दर्शन संस्कृत फलसफे नूं कहिंदे ने। जो गुरु की फलासफी है जे उहनूं नहीं समझिया ते दर्शन सदा अधूरे रह जाणगे। सतगुर नूं सब को देखदा जेता जगत संसार, डिठे मुक्त ना होवे जिचर गुर शब्द ना करे प्यार। गुर शब्द ना करे विचार, जिन्ना चिर गुरु के शब्द दी विचार, गुरु के बचना दा अध्ययन, गुरु के बचना दी कमाई ना कीती, उन्ना चिर केवल आए मथा टेक के तुर गए ता प्यार बढ़ा दूंगा। इस तरह वेखिया गल नहीं बननी, अखां नाल गुरु के सोहने दर्शन दिदारे ते मन नाल गुरु के दर्शन भाव गुरु के फलासफी दी विचार, गुरमत दी विचार चले। मन तन करके इथे महाराज कहंदे ने नहीं रह सकदा गुरु का सिख, गुरु के दोहां दर्शना बिना, फलासफी बिना ते देखे बिना गुरु नूं कोई नहीं इहदा गुजारा हुंदा। दासां ने पावे बिन दरसावे इक खिण धीरज क्यों करे, नाम बिहूणा तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। बंदा तड़फदा फिरदा रह जांदा, गुरु तो टुटिया, ईश्वर तो टुटिया होया, नाम तो टुटिया होया बंदा, मन करके तन करके बेचैनी विच रहिंदा। जिवे मछी पानी चो बाहर कढ के सुट दईए, ओनू कहीए तां केवल शरीर करके तड़फ रही है, मन तां इहदा सुखी है, कोई नहीं मन सुखी रहिंदा। ओह जिहड़ी शरीर करके तड़फ रही है अंदरों भी दुखी, ते जेड़ा बंदा अंदरों दुखी है ओ शरीर करके भी तकरीबन दुखी हुंदा है। आ तुसा देखिया बंदे नूं गुस्सा आ जावे, कहिंदा मेरा तां तन मन पिया सड़दा, कहिंदा और उंज भी चेहरा भी लाल सूहा हो जाएगा, हथ पैर कंबन लग पैणगे। हुण गुस्सा तां मन नूं आया, तेरे शरीर नूं की हो गया। और एक दिन ऐसा भी आवेगा डाक्टर कहणगे गुस्सा ना करिया कर, तेरा खाना तेनूं कोई नहीं भ्यास हुंदा, तेरा मेदा काम नहीं कहिंदा, क्यों मेदा तां शरीर है, मेदा तां शरीर दा केंद्र है, गुस्से दा दिमाग च गुस्से दा मेदे नाल की तलक है, बहुत वड्डा तलक। क्रोध करने वाला चिंता करने वाला अज नहीं ते कल नूं बहुत वड्डा बीमार हो जाएगा। शरीर ते मन दा बड़ा संबंध है, प्यार मन ते तन दोहां तरीकियां दे नाल पुगदा है, एक तरीके नाल कोई नहीं पुगदा। महाराज कहिंदे ने जिहड़े टुट गए ने प्यार तों, उन्हां दा मन ते तन दोवें कमजोर बेचैन दुखी रहिंदे ने। नाम बिहूना तन मन हीना, जल बिन मछली ज्यों मरे। ते कहिंदे ने मैनूं इहो जी मौत, इहो जिहा तड़फणा, इहो जी

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बकता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहा बैरागी, बिन हो त्याग कहा को त्यागी। बिन बस पंच कहा

गोविंद ना भजे अहम बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन ते डारे। ओढ़े वस्त्र काजर में

सत्संग बड़ा मुश्किल रह गया, चोखा मुश्किल, एक गया नहीं जाता। इन्नी तैयारी नहीं की हुई क्योंकि पहली बारी शायद दूजी बारी गान लगे, ते माली गौड़ा बड़ा मुश्किल आ गया, एदा हुण जान बड़ा विकट ते टेढ़ा जिहा है। आप सुनना

जे जे देख इस तन ने तारे जेड़े अपने तन नू लोगां नू पसान वाल के अपना तन भेखी बनाउणगे जे जे देख इस तन ने तारे ते प्रभ जन किछ कह ना बिचारे समझ लियो सब जन मन माही इथ फिर सब अखर आ गया समझ लो सब जन मन माही दिमन में परमेश्वर नाही जे जे कर्म कर डिम दिखाई तिन पर लोगन मो गत नाही परलोक उन्होंने गति बिल्कुल नहीं मिली जीवित चलत जींदिया होया वो बड़े सुखी रहेंगे क्यों के अमीर अपनी माया देके उन्होंने सुख देंगे जीवित चलत जगत के काजा स्वांग देख कर पूजत राजा स्वांगन में परमेश्वर नाही स्वांगन में परमेश्वर नाही हो फिरे सभी को काही किथे जी परमेश्वर अपना मन कर मुझे आना जिने अपना मन अपने हाथ च पकड़ लिया पार ब्रह्म को तिने पछाना महाराज भेखी ने उन्हां दा की हाल होएगा तो उन्हां चेलियां दा की हाल होएगा लो फिर सारे पढ़ियो

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंदे है, ए धर्म दी कैंची ना मुनी जांदा, लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम, नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। एक कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रियां बंद करके ते अंदर कू कू सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी, नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, जो मन जीत

जे जे बाद करत अहंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा हंकार वाला झगड़ा जिसे होमे वधे। कई बार परमार्थ की विचार करदे होया होमे वध जांदी, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितिया। कहिंदे उत्थों रब उत्थों चला गया, जिसने आ चीज आखी ओदे कोल रब चला गया। जे जे बाद करत हंकार, जिन ते भिन्न रहत करता, जान हर जन्म माई बेदक देव दिखे हर माई। ए झगड़ा मत करो, इथे तो रब है ही नहीं। बेदक देव दिखे हर माई, जान लो हर जन मन माही। आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे। आंख मीच मग सूज न जाई, ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता, ते अगला कौन वेखेगा। आंख मीच मग सूज न जाई, ताहे अनंत में

जो था अब है और आगे हुए है। पूछा महाराज तुहाडा गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह साहब जी पूछा गया तुहाडा गुरु कौन है? कहंदे आओ मैं तुहानू अपना गुरु दसा। कोट किंद्र करे जे के जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तारा तार भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तपसा दिता है सिर ऊ ब्रह्मा किच पार न पायो। आज तक शिवजी ते ब्रह्मा जिन्हां दा तप करदे ने ते उन्हां दा अंत दा पता नहीं लगा। आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किच पार न पायो, वेदक देव वेदक देव ना भेद लख्यो जे।

जान लगे ठगियो सब लोगन शीस जटा नख हाथ बढ़ाए जटा बना लिया ते हथा दे नौ बदा ते ध्यान ला के बैठ गए लोगों नु ठगन वास्ते ध्यान लगाए ठगियो सब लोगन शीस जटा नख हाथ बढ़ाए लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर स्वा मल लई लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए चंगे मारे सारे लुट ले मूर्ख ते सियाने सारे लुट ले इन्हें किसी ने छड़िया ही नहीं तू क्यों धोखा खा गया कहंदा चंगा भला मैं सियाना सा मेरी माती मारी गई ऐसे चलाक लोग समझ लाए बिभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए लोभ के लगे फिरियो कर ही कर जोग के नास सबे बिसराए आखो प्यारियो श्रीवा सारे नहीं आख्या सारे गज के आखो श्रीवा एक बार आख्या ते हजारा दा फल मिल गया इसलिए इस सस्ता सौदा फिर कर लो सारे गज के आखो लोभ दा मारिया होया घर घर भी चला गया कि मेरा सत्कार कर मैंने लोग नमस्कार कर पर जोगी नू अपने नियम भुल गए इनू ए नहीं पता कि जोगी बनी किवें दा किवें बनी दा जिवें सिख नू नहीं पता कि सिख किनू कहंदे ते पर लैणा असा राज करेगा खालसा आ की रहे ने कोई बिल्कुल गलत चीज ए इथे मलमा नहीं चल सकेगा ए गलत है साडा योग के न्यास सबे बिसराए जिहड़े योग दे नियम सन योग दे जिहड़े नियम सन ओ इहनू भुल गए अनी पता नहीं कि जोगी कहंदे किहनू नहीं पर ए मुंह ते सवा ला के जोगी बन के प्यार फिरदा जरूर जिवें इहनू नहीं पता कि सिख किहनू कहंदे नहीं ते कहंदा जरूर मैं आपणे आप नूं सिख ते बड़े मान पर्दा राज करेगा खालसा ज्यों ज्यों पढ़ी जांदा त्यों त्यों खुशी जांदा नुकसान हुंदा जांदा यह क्यों नुकसान हुंदा है यह पढ़न वल पै गया ते प्रैक्टिकल किसे अंदर चीज ना जीवन लियांदा गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ना समझिया सिर पढ़ छड्डिया और पढ़िया भी कवेले कवेले पढ़िया अज पता ही नहीं किस नूं कि राज करेगा खालसा पढ़िया किस वेले जाना है जे 11 बजे भोग पै गया तां भी पढ़िया गया 2 बजे भी पढ़िया गया 4 बजे भी पढ़िया गया मृतक ते भी पढ़िया गया सारे पासे पढ़िया गया यह खास नियम हन यह तख्तों नूं जाके पुछो कि राज करेगा खालसा नियम की और फिर अगो खालसे दे अर्थ करे कौन जिहड़ा डंडे खावे वो अर्थ करे क्योंकि तुसा अर्थ मन्ने नहीं पर आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने पर अज नहीं मैं कहना भाई कभी फिर आवांगे फिर वेखी जाए आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने हजूर कहंदे जोग के न्यास सबे बिसराए इहनू पता ही नहीं कि नियम की हन आ छोटा जिहा नियम गुरु रामदास सच्चे पातशाह लिखिया आए मेरे गुरसिख आए मेरे तू मेरे गुरु के प्यारे सारे आ गए भज के सारे आ गए सारे गाउन लग पे सारे सुन लग पे सतगुरु ने आग्ञा दिती सारी आई संगत जी सारे सारे सिख हो कहिंदे महाराज सारे ही तुहाडे सिख सारे ही तुहाडे सिख कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने चोज वरताया जे बीबी आवे ते पुछण बीबा तू किहदी सिखणी है वह अपने पति का नां लै दे जां इशारा कर दे मैं महाराज इहदी सिखणी सिख आया प्यारा तू किहदा सिख है उन्हें फिर अपने घर वाल इशारा करता कि महाराज मैं इहदा सिख सारे नूं पुछया कोई एक अद्धा निकलिया कहन लगे सारे अपने अपने सिख ते मेरा सिख कोई भी नहीं निकलिया

करना। एक कारण प्रभु हमें बनायो, भेद पाठ ए लोक पठायो, भेद दस के जिम तिन कही सबन उचरो, जिम मैनू मेरे वाहिगुरु ने कही है, मैं सारे नु कहन लगा मुखातिब करके, ए चीज याद रखनी, डिंब विम किछ नायक ना करो। एक तेन भेख नहीं करना और एक वह मिच भुलेखे च नहीं पैना, ए मैं बिल्कुल नहीं करना और ना सिख नु करन देना। डिंब विंब किछ नायक ना करो, मैं ना भेख करना ते ना वहम करना, एक अकाल पुरख की ओट रखनी। कहांगा कि लो प्यारे पे सारे तुसी कह लगे।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक बार मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताय। मथुरा कहिंदा है पट के जद तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावे जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साद सिदादक मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडलोए, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जदों राजे जनक दा दरबार लगिया सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिणिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखिए। सात संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरां दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचदे हन कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हन, तां देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए होए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीयां ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया बंदगी ना कीती आ हीरा जन्म पाके, जे तेनू मनुखा जन्म वाहिगुरु ने दिता है और तू बंदगी नहीं कीती तां तू अपने मनुखा जन्म नूं कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, उस स्वासां नूं कौडियां दे बदले वेच छड्डिया, ताई आखिया है।

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा। तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

भगती कर, उनु याद कर। परमेश्वर यारा दिए जिंदु होये पदत पुनीता, बाहर चलिया करन तप। 5 साल दा छोटा जिया बच्चा कहंदे ने, सतगुरु कहंदे ने जे मालिक नु मिलना ही ते बच्चे वर्गा हो जा। एदे विच को मेर तेर नहीं। कदे बच्चे ने किसे दूजे बच्चे नु पुछिया, छोटे छोटे क्लास विच पढ़दे ने ना, अजकल ते टाइया टाइया तिना तिना सालां दे दाखल करवा दिते। कदे किसे दूजे धर्म दे बच्चे नु किसे ने पुछिया भी तेरा धर्म केड़ा, तेरी जात केड़ी, तेरी गोत केड़ी है। ना आपस विच प्यार नाल हसते ने खेड़दे ने। सतगुरु कहंदे ने जे रब नु मिलना ही ते बच्चे वर्गा पुंजा। ये बड़ा भोला है, बड़ा चंगा है।

जाको ठाकुर ऊंचा होई, सोजन पर घर जात ना सोई। सो साहिब रया भरपूर, सदा संग नाही प्रभु दूर। कवला चरण सरन है जाके, कह जन का नाही घर ताके। सब कोई कहे जास की बाता, सो समरत निज पद है दाता।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे बिनासा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जनदासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पै, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो और अपने स्वामी पै, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पै कहिए।

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पत सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सोए कत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ

हे शब्द धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज शांति दे पुंज बाणी दे बोहित

ही कुछ शांति या ठंडक पहुंचा सकती है। मन नूं आत्मा नूं ठंडक नहीं पहुंचा सकती। चंदन मस्तक ते लाउंदे ने इसे वास्ते कि मस्तक विच दिमाग हुंदा है और दिमाग विच अनेकां फतूर हुंदे ने। दिमाग विच फतूर होवे, दिमाग विच क्रोध उत्पन्न हो जाए, सारा शरीर क्रोधा अग्नि दे विच थर थर कंबण लगदा है। मस्तक ते चंदन लाउण दा प्रतीक है शांति दा प्रदायक। लेकिन जे मन विच अग्नि होवे, क्रोध दी अग्नि, ते मस्तक ते चंदन लाया है, मन दी अग्न नहीं बुझेगी। ओ ते तां बुझेगी जे इसनू हरी नाम दा रंग चढ़ावेगा, परमेश्वर दे नाम दी इसनू शांति मिलेगी। ओदा चिंतन करके इस मन नू शीतलता प्राप्त होवेगी। जरा ध्यान देना, जालम ने एक ऐसा कांड रचिया जो इतिहास विच इस तो पहला किधरे दृष्टि नहीं आउंदा। इस कलयुग दी ते क्या गल है, पिछले जड़े बीते हुए समय ने युग ने उना विच भी ऐसी घटना किधरे सुनने विच नहीं आउंदी, पढ़ने विच नहीं आउंदी। पट्टी तैयार कीती गई है, उत्ते लोह रखी है, हुक्म दिता जालम ने एदे हेठा अग बालो, लकड़ा लिया कि अग बाली गई। उत्तों जेठ दी तपदी होई ए गर्मी दी रुत, ऐसे हाल विच आखे आ गया गुरु अर्जन पातशाह जी नूं, आप इस तवी दे उत्ते बैठो, असां वेखना है कि तुहाडे अंदर कितनी क शीतलता है। तुसी जो कहंदे हो कि मैनू कोई तपा नहीं सकदा, कोई जला नहीं सकदा, असां वेखना है शीतलता कितनी है तुहाडे अंदर। धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुस्कुराए, सतनाम श्री वाहिगुरु बोल के आप तवी दे उत्ते चौंकड़ा ला लिया, चौंकड़ा ला लिया इस तवी दे उत्ते और कह

और आप इतनी शांति नाल सब कुछ बर्दाश्त करी जा रहे हैं। हजूर कहन लगे, इना दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क रही है, इना दे अंदर नफरत द्वेष भावना दी अगन भड़क रही है, जो इना नू मजबूर कर दी है कि ए जुलम करन। ए सोच रहे ने कि मैं भी इस तपस दा प्रभावित हो जावा, इस नाल मैनू भी कुछ प्रभाव पवे, पर मेरे गुरु ने, मेरे परमेश्वर ने जो मेरे अंदर एक नाम दा, जो सारिया शीतलतावां दा एक सोमा है, वो ऐसा अमृत नाम बख्शिश कीता है कि ए तपदे होए कड़ाहे, तपदे होए हिरदे उस नाम दी शीतलता नू प्राप्त करके शांत हो जांदे। पर ए शीतलता, नाम दी शीतलता उना नू प्राप्त हुंदी है जिना दे भाग चंगे होवन, जिना दे श्रेष्ठ उत्तम भाग होवन। ए हरी नाम दी शीतलता उना नू प्राप्त हुंदी है, वरना मनुख जबान तो ते जब जरूर जपदा उस परमेश्वर दा नाम, पर जे अंदर क्रोध दी अग्नि होवे ओ जपे दा कोई फायदा नहीं। जे अंदर लोभ दी लालसा होवे, जे अंदर नफरत होवे, द्वेष भावना होवे, उस रसना तो जपे दा कोई फायदा नहीं। तो हजूर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने सारे संसार नु एक शांति दा उपदेश दिता है, ए क्रोध दी अग्नि बुझ सकती है जे नाम दा शीतल अमृत ओ सरोवर ओ सोमा हृदय विच

पूरे गुरु दा मिलाप होया, उदी बख्शिश होई है। जमदूत मेरे नालों हट गए ने, उना दा सहम मैनू हुण सता नहीं रहा, ओ भज गए ने मेरे कोलों।

अवगुण मनुख दे गुणा नूं कटदे ने दी हस्ती नूं कटदे ने ते सतगुरु अवगुणा नूं कटदे ने। सतगुरु दे नजदीक होइए, सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे ने, अवगुण कटे जांदे ने गुण निसरदे ने। जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा, जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी, जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मूआ, ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है, ऐसा जीवन बख्शिया है जिहड़ा मौत तो उपर है। और आप देखते हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जांदी, मनुखी जीवन दी कहानी मुक जांदी, लेकिन एक गुरु का सिख है जिहदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होंदी। पहला मरण कबूल जीवन की छड आस, औगण मर जांदे नकारा मनुख मर जांदा, एक सच्चे मनुख दा जन्म हुंदा, गुणा दा जन्म हुंदा, दैवी गुणा नूं लैके मनुख उपर नूं उठदा, गुरु नूं प्यारा लगदा, गुरु नूं पाउंदा है, संसार नूं चंगा लगदा। और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश कीती है सानू, जिवें महाराज ने कौन बाण च किया है ना, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे। तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी, तेरे चरनी लगन तो पहला साड़ी की अवस्था सी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए, सरदार हो गए, मान वाले हो गए, रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो, और ये सत्कार इथे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है, चूके सब सोग संतापे, जिंदगी विचों संताप निकल गए, चैन आ गया, सुख आ गया जीवन विच, कायर हुंदे सां बहादुर बना दिता, नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता, आलसी हुंदे सां उद्यमी बना दिता, बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता, परोपकारी बना दिता। और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्हें योग कीता, अमृत दियां दातां दे के, नाम दियां दातां दे के, बाणी दी सौगात बख्श के, जीवन दा सुचज बख्शिया। साहब कहंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया, तिस गुर को हों सदा घुमाया, मैं वारने जावां सतगुरु तो, तिस गुर को हों खन्नीए, मैं टोटे टोटे हो जावां बलिहारने जावां उस तो, जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया, जिसने वाहिगुरु दा नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया, तिस गुर को हों वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया, होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने, तिस सतगुर को वड पुन है उहदा कोट आन कोट धनवाद, उहने बड़ा पुन कीता मेरे ते, जिन अवगुण कट गुणी समझाया, सदा उस सतगुरु नूं चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है, उहदा परउपकार साडे सिर ते, उहदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है। जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना, हम कर्ज गुरु बहु साडे, साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के, अपने प्यार दी निशानी ला के, अपना बना के अपना रूप दिता है, अपना सुचज बख्शिया है, अपना प्यार बख्शिया है, असी उहदा देना है, असी उहदे कर्जई हां हम।

रोज पढ़दे हां। राती रुती थिती वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ए धरती मालक ने धर्मशाल बनाई, धर्मशाल ओनू कहने जिथे धर्म कमाया जावे, धर्म दी गल चले। ए धर्मशाल ओनू भी कहंदे ने जिथे रात दी रात रह के अगे तुर जाना हो। ए धरती दोवां तरह नाल धर्मशाल है, इथे असी धर्म कमाउण आए, धर्मी होण आए। मनुख जन्म मिलिया तां धर्मी होना है, पर नहीं साडे कोल तां गलती हो गई, पसारे पा के बह गए। महाराज कहंदे ने तां उस तरह गल है जिवें कोई चरवाहा पशु चराउण वाला अपना इजड़ लै के किसे चरागाह विच किसे ऐसे थां ते जिथे पशुआं नूं चारा सौखा मिल सके उथे लै के आया। पशु चर रहे ने, पशु घा चर जाणगे, रज जाणगे, मोड़ के टिकाणे ते लै जाणा। चट घड़ी दी खेड है, कुछ घंटियां दी गल है, लेकिन चरवाहे ने उन्हां घंटियां वास्ते उस जगह ते मल मार ली, उथे पसारा करना शुरू करता, पकड़ करके बैठ गए। बल्कि इथों तक भी कई बार कहिंदा है मेरी चरागाह है, मेरे पशुआं दे चरण दी थां है। हालांकि ना पशु ओहदे, ना धरती ओहदी, ना मलकीयत ओहदी, बिल्कुल एवें बंदे नाल होया। धरती ते आया सी, जीवन मिलिया सी, धर्म कमाउण वास्ते ते आ के तुर जाण वास्ते, पर इह तां पकड़ करके बैठ गया। धर्मशाल नूं घर बना के बह गए, पसारा पा के बह गए। महाराज कहिंदे ने जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे है आदमी बंद है घर बारा। ऐसा ना समझना कि जो कुछ संसार दी उसारी है ये रोक दिती जावे, कंस्ट्रक्शन रुक जावे, ऐसा नहीं है। संकेत सतगुरु नाल, क्योंकि गुरु घर विच तां आप बड़ियां बड़ियां वड्डियां उसारियां होईयां, और साहिब गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे कोल एक साई लोक ने प्रश्न भी कीता सी। कहन लगा महाराज की फकीरी ते की ये उसारियां, किले कोट नगर बड़ा लंबा चौड़ा पसारा है। महाराज ने क्या उरे हो, नेड़े हो जरा। सिर ते हथ रखता साहिबा ने, महाराज ने सिर ते हथ रखिया, एकदम की वेखदा है किसे स्वर्ग लोक च पहुंच गया, किसे बहिष्ट च जा पहुंचे। लेकिन देखिया उस स्वर्ग विच, उस स्वर्गी वातावरण विच कुछ रूहां कुछ आत्मावां ऐसियां भी ने, कुछ स्पिरिट्स ऐसियां भी ने जिन्हां नूं उचेचा सुख उचेचा आराम ते उचेचा सहूलतां दित्तियां जा रही। पंगूड़ियां विच पै के झूट रहे ने, हैरान हो गया, पुछदा है ए की। पंगूड़े विच झूटदी मौज माणदी एक आत्मा नूं पुछदा है, कहिंदा है ऐसा केड़ा पुन तू कीता, स्वर्ग स्वर्ग विच होर महास्वर्ग, सुखां दे वातावरण विच होर वधेरे सुख, इह तैनूं किस पुन करके मिलिया। ओ आत्मा कहिंदी, ओ रूह कहिंदी, ओ कहिंदी साईं लोका मैं शेर दी जूनी छड के आया। कमाल है, शेर नूं स्वर्ग, शेर दी आत्मा नूं, शेर दी रूह नूं स्वर्ग, ते ओह भी परम सुख वाला। कहिंदा कारण है शेर सां बुढ़ा हो गया, अपनी कगार

बिन बाजे कैसो नृत्यकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जेवा कहा को बक्ता, बिन श्रवना कहा को सुनता। बिन नेत्रा कहा को देखे, नाम बिना नर कहीं न लेखे। बिन विद्या कहा को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहा मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे मोढ़े वस्त्र का जर्म

0: You are listening to CBN Radio.
1: साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे साहिबजादियां ने सूबा सरहद नूं कड़क के कहा असी मौत विचों ही जिंदगी लभदे हां।

मौत बढ़ के आ गया। कोई मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी दे बच्चियां नू नीहां विच खिलार के जुल्म करे, ऐ गल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर कोलों बर्दाश्त ना होई। सूरमे दे अखां विच खून उतर आया, डोले फरक गए। ओ जलाद जिड़े आखदे सन गोड्यां दियां चपणियां उतार दो, कंध ना बिंगी होवे। समाणे दे रहण वाले ओ जलाद जिन्हां ने बच्चियां दे गोड्यां दियां चपणियां उतार दित्तियां सन, अज इन्हां जुलादां नूं घरों कढ के मारिया ते नाल 500 सिपाही नूं भी मार दिता है। जदों ये खबरां सरहंद विच पुजियां, बंदा सिंह बहादुर आ रहा है, हजारां दी गिणती विच शाही फौजां कठियां हो गईयां ने। अज बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद दे उपर

कब हूं ना डरूं। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे, शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजां ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मामा ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दियां नीहां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे सिपाही जांदे ने, दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना, इन्हां दे विच इक 18 साल दा नौजवान, बुढ़ी मां दा इको इक सहारा। जदों मां नूं पता लगा मेरे पुत्र नूं पकड़ लिया है, पापी राजा जुल्मी राजा सिंघां ते कहर टांदा है, मां दा दर्द उठिया, रहा ना गया, राजे दे दरबार विच गई। मेरा पुत्र सिंह नहीं, तेरे सिपाही ओनू भुलेखे नाल लै आए ने। बई ठीक है, जे तेरा पुत्र कह देवे मैं सिंह नहीं, ते असी ओनू छड़ देवांगे। केड़ा है ओ सामने बंधिया होया है। सिपाही लेके आए, असी तेनू छड़ रहे हां, सानू पता लगा है कि तू सिंह नहीं है। अज गुरु दा प्यारा कूक कूक के बोलिया, कौन कहंदा मैं सिंह नहीं, मेरी दस्तार वल तक, मेरे चेहरे वल तक तेनू मैं सिंह नहीं लगदा, कौन कहंदा है। ओ सामने तेरी अम्मा खलोती है, वो कहती है नहीं नहीं वो मेरी मां नहीं है। अब तक लो सिखी किन्नी प्यारी है सिख नूं, वो मेरी मां नहीं, हो सकता है उदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर वो सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मावां इंज सिदकों डोलदियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक बारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ये तेनू छड़ देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका, अजे बहुते दिन नहीं होए किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नूं सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मावां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओह ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नूं तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जिहियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंश वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लकोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश कीती गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साला

0: तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम, मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है। सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है। दरा भीतर दर कवन लहे, ओ केड़ा दर है। जिथे भी साध जन बैठ के उन्हूं चेते करदे ने उथे।
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani 24 hours a day from around the world.